0: झोलना थोड़ी ही थोड़ी थोड़ी ये तो।
1: Four two.
2: Town and Neely, George, Boy Tom, 4460, George Boy Tom, 4460.
1: 6 4 2, okay.